0: ब्रह्मणि सिक्खा पथं समाधियामि
1: सुरामेरय मच्छपमाथथाना वेरमणि सिक्खापथं समाधियामि
0: इमानि पञ्चसिक्खापथानि सीलेन सुखं यन्ति सीलेन भोगसम्पदा सीलेन निपुणं यन्ति।